दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में अभी जो गीत आपने सुना वो था फिल्म संजोग से, गाया था लता मंगेशकर ने, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे मदन मोहन। भूली हुई दास्तां, भूली हुई यादें फिर से आती हैं तो जी बेकरार हो जाता है। जिन्हें भूलना चाहते हैं वो अक्सर याद आते हैं। क्यों याद आते हैं? वो अब हमारी जिंदगी में नहीं है, फिर भी यादों में ऐसे बसे हैं कि कमबख्त जाते ही नहीं।

0: दिल ने पुकारा आपने ट्यून किया है रेडियो विश्वास पर 90.8 पर। मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। दोस्तों अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म आबरू से, गाया था मुकेश ने, गीतकार थे जीएल रवेल, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। दोस्तों भूली हुई दास्तानें सताती हैं जब ये प्यार मोहब्बत वाली बातें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनती है तो पूरी जिंदगी ही बन जाती है। किसी को सामने देखकर जहां भुला देती है, एक ऐसा ही प्यारा सा गीत है फिल्म जूली से, गाया है किशोर कुमार ने, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने और लिखा है आनंद बख्शी ने।
1: भूल गया सब कुछ

पुकारा में अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया गीत फिल्म सरस्वती चंद्र से। गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। दोस्तों, हर लड़की अपनी माँ का घर भूलकर ससुराल में इतनी घुल मिल जाती है, इसलिए तो ये भारतीय संस्कृति विवाह का ये अटूट बंधन चलता आ रहा है। ये रीति रिवाज, ये रस्में निभाई जाती है सदियों से, और यही आगाज रहे तो शायद चलते ही रहेंगे ये बंधन, ये रस्मों रीति रिवाज सदियों तक। शायद ये बंधन इसलिए भी टिके हैं कि कोई किसी को भुला देता है।

दिल ने पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म सट्टा बाजार से, गाया था हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने, लिखा था गुलशन बावरा ने और संगीत में पिरोया था कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों आपने ट्यून किया है 90.8 रेडियो विश्वास, मैं हूं प्रांजलि आपके साथ और हम कुछ भूले बिसरे सुहाने गीत सुन रहे हैं। दोस्तों सारी संजोग की बातें हैं, कोई किसी को भुला देता है, कोई किसी को याद रखता है, कोई संस्कृति के पथ पर चलकर समाज व्यवस्था को संजोए रखता है और हम और आप उन्हीं में से एक जरूर है। तो ऐसे ही गीत सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। प्रोग्राम के आखिर में सुनेंगे फिल्म साथी का ये गीत, गाया है मुकेश ने, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है नौशाद। तो दोस्तों ऐसे ही गीत सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे बड़े ही विश्वास के साथ रेडियो विश्वास पर। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार, तब तक नमस्कार।

0: रसिकहो नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ, तुमचं जगणं तुमचा आवाज. आणि मी आहे आरजे श्रद्धा, अर्थातच वारली चित्रकलेवरची श्रद्धा अशी आरजे श्रद्धा. रसिकहो फॉरेन लँग्वेज ऑनलाईन ऍप्लिकेशन्स ह्या कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं अतिशय मनपूर्वक स्वागत. मंडळी, आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की शैलेश लेले सरांनी दोनही भाषा शिकवण्याचा एक खूप छान इनिशिएटिव्ह घेतला आहे. जर्मन आणि फ्रेंच भाषा ऑनलाईन पद्धतीने वेगवेगळ्या वयोगटातल्या व्यक्तींनी शिकलेली आहे. जे शिकत आहेत त्यांचे अनुभव आणि जे शिकलेले आहेत त्यांचाही अनुभव आपण ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जाणून घेत असतो. यासोबतच काही एक्सपर्ट व्यक्तीसुद्धा ह्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होतात. संपूर्ण जगभरातून अनेक व्यक्ती ह्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होतात आणि फ्लोआचा त्यांचा एक्सपिरियन्स ते आपल्यासोबत शेअर करत असतात. याच अनुषंगाने आज माझ्यासोबत खास नागपूरहून दोन विद्यार्थी आणि त्यांच्या शिक्षिका जोडल्या गेलेल्या आहेत. एक म्हणजे विंजल वंजारी, जी इयत्ता 8वीला आता शिकते आहे, आणि दुसरा दर्शील सोनटक्के, जो आता 9वीत गेलेला आहे. हे दोघेही विद्यार्थी राही पब्लिक स्कूल जैताडा नागपूर या ठिकाणचे आहेत आणि त्यांच्या शिक्षिका त्यांच्यासोबत आज खास उपस्थित आहेत, त्या म्हणजे राणी शिंदे. ह्या तिघांशीही आज आपण गप्पा मारणार आहोत आणि एकूणच फ्लोआ विषयीचा अनुभव त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत. तर त्या तिघांचंही मी अतिशय मनपूर्वक स्वागत करते. आप तीनों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है रेडियो विश्वास के इस स्टूडियो में.
1: धन्यवाद मैम.
0: तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी विंजल से. विंजल.
2: यस मैम.
0: आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो या सीख चुके हो, जर्मन या फ्रेंच?
2: मैं जर्मन लैंग्वेज सीख रही हूँ.
0: कितने आपके लेवल्स कम्प्लीट हो चुके हैं?
2: लेवल 2 तक कम्प्लीट हो चुका है.
0: अच्छा, तो आपने ये लैंग्वेज क्यों चूज करी?
2: वहाँ दो ऑप्शन थे, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज के लिए, पर मुझे ऐसा लगा कि जर्मन लैंग्वेज लेना चाहिए.
0: उसकी कोई खास वजह है?
2: नहीं, ऐसे कोई खास वजह नहीं है.
0: आपको इसके बारे में कब पता चला?
2: हमारे स्कूल के व्हाट्सएप पे मैसेज था जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए, तो इसके बारे में हमारे जो स्कूल के टीचर्स थे, रानी मैम और मेरे क्लास टीचर ने भी बताया था, और मैं इसके लिए एक्साइटेड भी थी, इसलिए मैंने ये क्लासेस ज्वाइन वगैरह किए.
0: तो कैसा रहा एक्सपीरियंस जब आपको पता चला कि इस तरह से ऑनलाइन तरीके से हम लोग सीख सकते हैं, वो भी इतने कम पैसों में? घर जाके आपने मम्मी पापा को कन्विंस किया या वो राजी हो गए, तुरंत मान गए, किस तरह से रहा?
2: मेरा एक्सपीरियंस फ्लोआ के तरफ से बहुत अच्छा था. मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इसके लिए मदद की, ऐसे कोई मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ी. मेरे पापा भी बहुत खुश थे कि मैं नई लैंग्वेज सीखूंगी, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी.
0: तो जब आप पढ़ रहे थे तब कुछ दिक्कतें आई, कुछ टफ लगा कि यार क्यों इसमें एनरोल किया, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह का कुछ सिचुएशंस रहा?
2: नहीं, वैसे पढ़ते पढ़ते स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आई, पर बाद में सब आराम से बराबर हो गया.
0: तो जब आपको कुछ डिफिकल्टीज आ रहे थे तो किस तरह से आपने वो सॉल्व करे और किन लोगों ने आपकी मदद की?
2: मुझे कुछ डिफिकल्टीज वगैरह आए थे उस लॉग इन के बारे में वगैरह, मुझे वो रानी मैम ने अच्छे से क्लियर वगैरह कर दिया था, और उसके बाद कोई दिक्कतें नहीं आई.
0: जर्मन लैंग्वेज की कौन सी खासियत लगती है आपको कि ये स्पेशल है इस लैंग्वेज में, ऐसा कुछ लगता है आपको?
2: हाँ, ये एक स्पेशल ही है कि हमें ये सामने के जॉब्स में वगैरह काम आ सकता है, और ये इजी भी है. मतलब हमारे जो डिफरेंस है, मतलब हमारी जो है लैंग्वेज इंग्लिश और जर्मन में बहुत सारे वर्ड सिमिलर्स वगैरह है, और इजी भी है सीखने में.
0: अच्छा, तो जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो किस तरह से आपने इसको टाइम दिया स्टडी को?
2: बीच बीच में हॉलीडेज वगैरह थे, उसके लिए मैंने टाइम वगैरह दिया जर्मन लैंग्वेज को अच्छे से, उसको रिवाइज वगैरह किया. मतलब वैसे वैसे क्लासेस हो रहे थे, मैं वैसे वैसे नोट्स बनाते जा रही थी, उससे मुझे बहुत इजी हुआ.
0: अच्छा, तो जब एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, तब रिजल्ट क्या था, कितने मार्क्स थे आपको?
2: तब जर्मन लेवल 1 में मुझे थोड़े कम मार्क्स आए, मतलब डिस्ट्रिक्ट रैंक 2 आया था, 31 करेक्ट थे और 11 रॉन्ग थे, और जर्मन लेवल 2 में 35 करेक्ट थे, 15 रॉन्ग थे. उस टाइम मुझे डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 आया, मैं बहुत खुश थी उस टाइम.
0: जी जी, बढ़िया. तो ये जो लैंग्वेज है, ये सीखने के बाद कभी उसमें बात करने की कोशिश की, कुछ जर्मन में सेंटेंस बनाए, कुछ स्टोरी ट्रांसलेट करी, इस तरह के कुछ आपने एक्सपेरिमेंट किए थे?
2: हाँ, मैंने किए. मतलब अभी उतना सीखा था तो इंट्रोडक्शन वगैरह मेरा था, मैं बात वगैरह करती थी जर्मन में.
0: अच्छा, ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ दर्शील से. दर्शील हाय, कैसे हो?
3: मैं अच्छा
0: हूँ, बस बढ़िया। तो नागपुर में अभी क्या हाल है? गर्मी है, बारिश हो रही है, किस तरह का मौसम है?
3: मैम अभी नागपुर का मौसम मतलब ऐसा कुछ बता नहीं सकते, कभी पूरा मिक्स हो चुका है, कभी बारिश आ रही है, बीच में धूप पड़ रही है और रात को बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है।
0: अच्छा, तो स्कूल जाते वक्त कुछ दिक्कत आती है, कभी बारिश आई?
3: वो मैम उतनी कुछ दिक्कत आती नहीं है क्योंकि स्कूल के रास्ते में सारे परमानेंट रोड्स है तो उनमें पानी ज्यादा जमा नहीं होता है।
0: अच्छा, तो अभी घर वाले कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि अभी आपके 2 साल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक से पढ़ाई करो, अभी ये 9th है, अगले साल में 10th है, ऐसे कुछ शुरुआत हुई है घर पे बातें करने की?
3: हाँ मैम शुरू तो हो गया ऐसा।
0: तो काफी प्रेशर महसूस करते होंगे आप?
3: नो मैम, प्रेशर तो महसूस नहीं हो रहा है, बस थोड़ा सा लग रहा है कि इस साल पढ़ाई को और बढ़ाना पड़ेगा।
0: अच्छा, तो अभी फ्लोआ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फ्लोआ के बारे में आपको कब पता चला?
3: मैम हमारे स्कूल में फ्लोआ के रिप्रेजेंटेटिव गए थे तो एक दिन ऐसे ही मॉर्निंग असेंबली में उन्होंने फ्लोआ से हमको इंट्रोड्यूस कराया कि फ्लोआ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चीपली न्यू लैंग्वेज सीख सकते हैं और उसके साथ एग्जामिनेशन भी हो गए उनकी।
0: अच्छा, फिर आपने कौन सी लैंग्वेज चूज की थी?
3: मैम मैंने फ्रेंच चूज की।
0: अच्छा, उसकी कोई खास वजह?
3: हाँ मैम, मुझे फ्रांस ज्यादा पसंद है।
0: क्या जानते हो फ्रांस के बारे में?
3: मैम फ्रांस इज द स्वीट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मैम जो मोस्ट ऑफ द अर्लियर टेक्नोलॉजी से वो फ्रांस से ही आए और तो मोबाइल से लेकर बहुत सारी कंपनी वहां से स्टार्ट हुई है।
0: तो आपको आगे जाके पढ़ाई भी वहां करनी है या वहाँ पे सेटल ही होने जाना है?
3: पढ़ाई
0: करनी है। अच्छा, तो फ्रेंच लैंग्वेज में आपके कितने लेवल्स कंप्लीट हुए?
3: मैम मेरे 2 लेवल्स कंप्लीट हो चुके।
0: मार्क्स कितने मिले आपको?
3: मैम मुझे दोनों इसमें डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 है, फर्स्ट में 50 में से मुझे 45 थे और सेकंड में 48 थे।
0: बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छा। कैसा लगा आपको ये लैंग्वेज सीखते हुए?
3: मैम फ्रेंच सीखने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, शुरुआत में ये भाषा मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी लेकिन वहाँ के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे उनकी वजह से ये काफी आसान हो गया। वहाँ के टीचर्स हर टॉपिक को बहुत अच्छे और सिंपल तरीके से समझाते हैं।
0: घर वाले कभी ऐसे बोलते हैं कि अभी आप अच्छी कुछ लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसमें कुछ बात करके बताओ?
3: हाँ मैम बोलते तो छोटे छोटे सेंटेंसेस ट्राई कर कर बोलने के लिए।
0: कुछ सुनाएंगे आप फ्रेंच लैंग्वेज में?
3: जमा पेल दर्शिल जो हाबी से नागपुर महाराष्ट्र, जमा फेवरेट कॉलर एस से येल्लो।
0: बढ़िया, तो आपको क्यों लगता है कि ये जो फॉरेन लैंग्वेज है ये इंडिया के बच्चों ने क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों सीखनी चाहिए?
3: मैम फॉरेन लैंग्वेजेस में अगर आपको कहीं बाहर फॉरेन में कुछ जॉब करनी हो या फिर किसी तरह का वर्क हो तो उसमें स्कोप बहुत ज्यादा है और दूसरी बात नई नई लैंग्वेजेस सीखने से जो अपना ब्रेन रहता है उसकी एक्सरसाइज होती है और मेंटल विकास होता है फिर अपने ब्रेन का।
0: अच्छा, तो जो भी आपके फ्रेंड्स है जो अभी कुछ लोग सुन रहे होंगे रेडियो पे आपको, तो उन्हें कुछ मैसेज देना चाहोगे कि अगर उन्हें भी कोई आगे जाके ऐसा मौका मिला तो उन्होंने भी कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए?
3: मैं उनको प्रेरित करना चाहूंगा कि उन्होंने भी फॉरेन लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी और उन्हें मजा भी आएगा।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शिल। तो रानी मैम आपके पास आती हूँ अभी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू मैम।
0: तो आप कितने सालों से बच्चों को पढ़ा रही है स्कूल में?
1: हम लोगों ने बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया ये फॉरेन लैंग्वेज का, तो पास्ट 2 इयर्स से हम लोग इसके कनेक्शन में है।
0: और एज ए टीचर आप कितने सालों से पढ़ा रही है बच्चों को?
1: एज अ टीचर मोर देन 25 इयर्स आई एम इन दिस टीचिंग फील्ड।
0: क्या बात,
1: पिछले 25 साल।
0: जी जी, और आप नागपुर से ही बिलोंग करती है?
1: मेरा रहना आई मीन टाउन बॉर्न एंड ब्रॉट अप बलाशा, आई गॉट मैरिड मैं और फिर मैं नागपुर में आई और वहां से मेरा टीचिंग करियर स्टार्ट हुआ।
0: अच्छा, ग्रेट। तो ये जो फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में जैसे ही आपको पता चला तब क्या लगा था आपको, ये इतना वर्क करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ऑनलाइन तरीके से सिखा रहे बच्चों को तो बच्चे ग्रास्प कर पाएंगे नहीं, कुछ डिफिकल्टीज उनकी सॉल्व होगी? बेसिकली ये कुछ जो एप्लीकेशन है ये आपको वर्क करेगा या नहीं, ऐसा कुछ लगा था?
1: नहीं मैम, हमको जो ऐसा कुछ नेगेटिव कुछ नहीं आया. हम सब लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हमारे जो सेक्रेटरी सर है नरेश वसु सर, उनके जो फ्रेंड है डॉक्टर विशाल लिचड़े, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सॉफ्ट साइंस नागपुर, उन्होंने ये बात को इंट्रोड्यूस किया और वसु सर के थ्रू मेरे तक आया है वो. और प्रिंसिपल मैम हमारी जो गुरप्रीत कौर मैम है, तो सब लोगों ने बहुत ही पॉजिटिविटी दिखाई इस बारे में. तो हम लोग भी एक्साइटेड थे कि ये कुछ नया लैंग्वेज जब हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड अभी काफी इसकी मांग है, डिमांड है. तो हमको ऐसा कुछ लगा नहीं मैम, हम लोग बहुत ही पॉजिटिव थे. हम बच्चों को प्रेयर मॉर्निंग असेंबली में बताएं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, हर स्कूल क्लास का एक एक ग्रुप रहता है, वहां पर हम लोगों ने ये सब लेवल्स कैसे रहते हैं, कौन से लैंग्वेज का क्या है, ये सारी चीजें उनको बताई और वो रिटन फॉर्मेट में हर क्लास में गया है. तो एंकरेज किया हम लोगों ने.
0: क्या बात है, बढ़िया. कुछ मेमोरेबल इंसिडेंट्स बताना चाहोगे आप यहाँ पे?
1: मेमोरेबल इंसिडेंट्स मींस जो वीडियोस जो फ्लो देती है ना मैम, ये काम कर गई है. वीडियोस का जो सेक्शन था ये इतनी यानी हैंडी है और इतने प्रैक्टिकल है कि बच्चे को अगर एक बार नहीं समझेगा तो वो फिर से देखेगा. वो एक टीचर को बार बार जाके इन पर्सन नहीं पूछ सकता, लेकिन वीडियोस उसके पास में रहते हैं, कभी भी वो ऑनलाइन देख सकता. कोरोना में ये प्रैक्टिस हो चुका सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस का, तो वो बहुत ही इजी था उनके लिए. और बच्चे कैसा है, कॉन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन अभी हमको और ज्यादा इस पर और फोकस करेंगे अभी नेक्स्ट ईयर से, कमिंग सेशन से.
0: क्या लगता है आपको ये जो इनिशिएटिव है वो कितना इफेक्टिव है, कितना जरूरी है, आगे किस तरह से इसका फ्यूचर है, क्या लगता है?
1: मैम द फ्यूचर इज ब्राइट. मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे ने इसे सीरियसली लेना चाहिए. जर्मन, फ्रेंच, मैंने सर से, विशाल सर से स्पेनिश के बारे में भी पूछा,

0: जरूर अपने लिसनर्स को और सारे बच्चों को एक मैसेज देना चाहूंगी कि अभी का जो दौर है, अभी का दौर और आगे वाला जो फ्यूचर है, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही कनेक्टेड नहीं रहना है जैसे पिछला दौर था, लेकिन अभी का जो दौर है यू शुड बी मल्टी फैसेटेड। आपको अलग अलग चीजों में अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना है। जैसे सिर्फ आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हो राइट फ्रॉम नर्सरी टिल 10th स्टैंडर्ड, सो गो फॉर न्यू लैंग्वेजेस, नए लैंग्वेजेस पढ़ो, उसमें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड डेफिनेटली फ्लो इज देयर एंड यू विल बी डूइंग बेस्ट इन ऑल फॉरेन लैंग्वेजेस, सो थैंक्स टू फ्लोआ वंस अगेन।
1: ओके, बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके।
0: ओके,
1: यस, आप सभी को आगे की भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप, जी, आपने वक्त निकाला, हम सभी श्रोताओं से बात की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसलिए मैं आप तीनों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अभी के लिए हम यही रुकते हैं, धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: तरुमंडली फॉरेन लैंग्वेज ऑनलाइन ऍप्लिकेशन्स या कार्यक्रमामध्ये राही पब्लिक स्कूल जैताडा नागपूर या ठिकाणाहून विंजल वंजारी, दर्शील सोनटक्के आणि त्यांच्या शिक्षिका राणी शिंदे हे तिघही आपल्याशी जोडले गेले होते। कार्यक्रमात आता वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची, पण तुम्ही ऐकत रहा रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ, तुमचं जगणं तुमचा आवाज।

0: मुझसे और कभी लड़ती भी है ऐसे के बस खेल रही है मुझसे और आगोश में नन्हे को लिए
1: Will you shut up?
0: La

दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में अभी जो गीत आपने सुना वो था फिल्म संजोग से, गाया था लता मंगेशकर ने, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे मदन मोहन। भूली हुई दास्तां, भूली हुई यादें फिर से आती हैं तो जी बेकरार हो जाता है। जिन्हें भूलना चाहते हैं वो अक्सर याद आते हैं। क्यों याद आते हैं? वो अब हमारी जिंदगी में नहीं है, फिर भी यादों में ऐसे बसे हैं कि कमबख्त जाते ही नहीं।

0: दिल ने पुकारा आपने ट्यून किया है रेडियो विश्वास पर 90.8 पर। मैं हूं प्रांजलि आपके साथ। दोस्तों, अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म आबरू से, गाया था मुकेश ने, गीतकार थे जीएल रवेल, संगीतकार थे शंकर जयकिशन। दोस्तों, भूली हुई दास्तानें सताती हैं जब ये प्यार मोहब्बत वाली बातें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनती है तो पूरी जिंदगी ही बन जाती है। किसी को सामने देखकर जहां भुला देती है, एक ऐसा ही प्यारा सा गीत है फिल्म जूली से, गाया है किशोर कुमार ने, संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने और लिखा है आनंद बख्शी ने।
1: भूल गया सब कुछ

दिल ने पुकारा में अभी आपने बड़ा ही खूबसूरत गीत सुना जो शायद कभी भुलाया जाए। कुछ गीत, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भुलाई नहीं जा सकती, जैसे कि पहली नौकरी, पहली तनख्वाह, इस पहली तनख्वाह से ली गई चीजें, पहली गाड़ी, पहला खुद का घर, पहला एरोप्लेन का सफर, पहली ट्रिप और न जाने क्या क्या। दोस्तों, लड़कियां शादी के बाद दूसरे घर चली जाती है तो क्या मैका भूल जाती है? कभी नहीं। पर देखिए, एक ये बड़ा ही सुहाना

दिल ने पुकारा में अभी आपने सुना लता मंगेशकर का गाया गीत फिल्म सरस्वती चंद्र से। गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। दोस्तों, हर लड़की अपनी माँ का घर भूलकर ससुराल में इतनी घुल मिल जाती है, इसलिए तो ये भारतीय संस्कृति विवाह का ये अटूट बंधन चलता आ रहा है। ये रीति रिवाज, ये रस्में निभाई जाती है सदियों से, और यही आगाज रहे तो शायद चलते ही रहेंगे ये बंधन, ये रस्म और रीति रिवाज सदियों तक। शायद ये बंधन इसलिए भी टिके हैं कि कोई किसी को भुला देता है।

दिल ने पुकारा में अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म सट्टा बाजार से, गाया था हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने, लिखा था गुलशन बावरा ने और संगीत में पिरोया था कल्याण जी आनंद जी ने। दोस्तों आपने ट्यून किया है 90.8 रेडियो विश्वास, मैं हूं प्रांजलि आपके साथ और हम कुछ भूले बिसरे सुहाने गीत सुन रहे हैं। दोस्तों सारी संजोग की बातें हैं, कोई किसी को भुला देता है, कोई किसी को याद रखता है, कोई संस्कृति के पथ पर चलकर समाज व्यवस्था को संजोए रखता है और हम और आप उन्हीं में से एक जरूर है। तो ऐसे ही गीत सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। प्रोग्राम के आखिर में सुनेंगे फिल्म साथी का।

ये गीत गाया है मुकेश ने, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है नौशाद। तो दोस्तों ऐसे ही गीत सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे बड़े ही विश्वास के साथ रेडियो विश्वास पर। फिर मिलेंगे अगले मंगलवार, तब तक नमस्कार।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

0: मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो तुम्हें रोशनी किए देती हूँ।
1: जस्सिम चांदनी हो तुम, अंधेरा है तो रहने दो मुझसिम।

फैशन बढ़ेंगे, कपड़े घटेंगे, मालिक ही जाने कितने रहेंगे। मौसम का ये खेल, जुल्फे छटाओ, नाखून बढ़ाओ,